सच्चे पातशाह, धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आपने इस पावन पवित्र शब्द दे विच पैरो महला पहला दा शब्द है जो विचार पेश कर रहे हैं अंधले क्या पा

जाग आए। इस पंक्ति तो यह सिद्ध हुंदा है कि इंसान ने इस जन्म दे विच आके कोई खास वस्तु प्राप्त करनी सी, कोई बहुत उचेची चीज इसने हासिल करनी सी। सिर्फ वो इसका मिशन सी, इसका पर्पस। अंदले क्या पाया जग आए, पाप के इथे आके कुछ पाना सी। महाराज जी ने पूछिए, सच्चे पातशाह वो वस्तु जो असी पानी सी, वो किथे है? जो असी पानी सी वो वस्तु है किथे? तो गुरु साहिब उसका जवाब देते हैं, कहते हैं

आखण कहण न थमिए, पाया कुछ नहीं, अंदर ही सी, उसका पता भी नहीं लगा, उसने पाया ही नहीं, कुछ भी नहीं पाया। लेकिन गल बात करके देखो, हर बंदा आखण कहण न थमिए, गल बात दे विच वो थमदा ही नहीं, चुप ही नहीं करता है। कहिंदे सानू ते इस अफसोस दे नाल गुमसुम हो जाना चाहिदा सी कि ये की हो गया साडे नाल, असी कुछ पाण आए सी, और साडे अपने ही पास सी, साडे अपने ही अंदर सी, असी उसनू पाया नहीं है, फिर असी केड़ी गल दा माण करिए। कहिंदे हन

कहते कमलिए बाहर की ढूंढ रही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम भुलाए। जिहड़ा बाहर टोल रहा है वो परम दे विच भुलिया पिया है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं। सतगुरु बाबा जी आखते हैं सब कुछ तुहाडे अपने अंदर है, पर ए अंधले इंसान तू ए दस। फिर वापस उही सवाल आता है कि तू अपने अंदरों अंदरले जगत चो अपनी अंदरली दुनिया चो अपने ही अंदरों तू की पाया है। बस इस सवाल का इस विचार दे नाल अगर कोई इंसान बेचैन नहीं हुंदा तो वह बहुत गहरी नींद दे विच सुता पिया है। सुते पे बंदे नूं जो मर्जी आखी जाओ उसते की असर हुंदा है? कोई असर नहीं ना हुंदा। कोई बंदा सुता पिया होवे उसके आले दुआले जो मर्जी कही जाओ उसते कोई असर नहीं हुंदा, उसनूं पता ही नहीं लग्या की किया गया। या फिर कोई इंसान बिल्कुल बेहोश होवे उसनूं कुछ किया जाए तो उसनूं भी पता नहीं चलता, वो बेहोश है। या कोई इंसान कोमा च होवे तो उसनूं भी कोई पता नहीं चलता की किया गया है। असी किस स्टेट ऑफ माइंड दे विच हां? अगर ते असी अवेकंड हां, जाग रहे हां, सुरती च हां, सुते हुए नहीं हां, तो फिर की सानू यह गल बेचैन नहीं करेगी? कोई साडे अंदर सोच नहीं लियाएगी? कोई साडे अंदर फिक्र नहीं पैदा करेगी कि गुरु नानक देव जी का यह शब्द है, गुरु नानक देव जी महाराज वर्गी हस्ती ये कह रही है कि अंधले क्या पाया जगाए, तो जी फिर भी राम ना बैठे रही है। वो तो वह गल हुई जो बाणी च लिखी महाराज ने कि सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सारियां जान लिया सुन लिया फिर चुप कर गए, फिर आराम नाल बैठ गए। फिर भी तलाश ढूंढ खोज क्वेस्ट कोई भी आरंभ ना हुई, जिंदगी उस तरह की ही रही कि असीं अजिहे लोग हां। गुरु बाबा जी गुरु नानक वर्गी शख्सियत यह आख रही है अंधले क्या पाया जागाए, मीन्स कि इस जगत दे विच आके कुछ पाना सी, तुसी वो पाया है या नहीं? फर्दर क्वेश्चन, महाराज जी वो पाउण वाली वस्तु कित्थे है? वो कहिंदे तुहाडे अपने अंदर है, तुहाडे अपने अंदर है।

कितना स्पष्ट किया है कि वो अवेलेबल है, वो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कोई उसमें खोजने की कोशिश करे। इम्पॉसिबल नहीं है, जो खोजे सो पावे, वो जरूर पाएगा जो खोज करनी शुरू करेगा। कहते ओ शक्ति, ओ महान मिस्टीरियस वस्तु जो सारे जगत की रचना नु रचती है, बनाती है, सवार दी है, श्रृंगार दी है, प्रतिपाल दी है, सबना दे अंदर जीवन जो भरती है। कहते ओ अकाल पुरख वाहिगुरु की होंद, ओ अकाल पुरख जो सारे खंडा ब्रह्मंडा दे विच मौजूद है, उतना ही उतना जितना सारे जगत मौजूद है इस देही दे अंदर मौजूद है। जो खोज है सो पाल, जो उसनु खोजन की कोशिश करेगा वो उसनु अवश्य पा लेगा। चौथा नुक्ता यह है, वो उसनु प्राप्त कर लेगा। हुण असी यह देखना है कि असी इस बॉडी दे विचों की खोजया है, की लभ्या है, की पाया है। पंजवां नुक्ता, गुरु महाराज जी आखदे ने ये जिहड़ी देही है एक घोड़ी है, भाव कि यह वहीकल है, अते इस देही दे द्वारा ही, इस ह्यूमन फॉर्म दे द्वारा ही तुसी उस पॉइंट तक पहुंचना है जिथे वो ट्रेजर है। जे ये देही ना होवे, ह्यूमन फॉर्म ना होवे, तो तुसी वो वस्तु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस तक पहुंचने दे वास्ते इस देही ने ही तुहाडी हेल्प करनी है, इस तो तुसी कम लेना है। कहिंदे हन एक घोड़ी है, इस उत्ते तुसी ट्रैवल करना है, तुसी इसके मास्टर हो, तुसी इसके ड्राइवर हो, तुसी इसके संचालक हो, तुसी इसको चलाने वाले हो, अते इसकी लगाम तुहाडे हाथ में होनी चाहिए है। पर ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। कई दफा जो नहीं बोलना चाहते, जो नहीं बोलना चाहिए वो असी बोल जाने हैं, वो फिर क्यों बोल होता है? जो नहीं करना चाहिदा वो असी कर जाने हैं, तो जो करना चाहिदा है वो असी नहीं करते। तो असी देही दे मास्टर नहीं हां कि असी इसनु अपनी मर्जी दे नाल जो वर्तीए, असी इस इंस्ट्रूमेंट दे गुलाम बन गए हां, सेंसेस दे गुलाम बन गए हां। इंद्री सबल निबल बबेक बुद्ध कर कल दे कीर्तन च आखी सी पंक्ति कि इस दियां इंद्रियां बलशाली हैं, हुण वह धोई फिर दियां हैं, वह खिंची फिर दियां हैं सानू। वह गल हो गई है कि सवार नू हुण घोड़ी खिंची फिर दी, धोई फिर दी, वह सवार का हाल तुसी देख लो की होएगा। घोड़ी किसी के पास होवे, उस उत्ते सवार हो जाए, फिर उसनू यह ना पता चले कि घोड़ी ने हुण उसनू किधर लैके जाना है। वो उसनु रोकना चाहे वो रुके ना, किसे खड्डे च डिग के ही मरेगा। गुरु बाबा जी आखदे हन इसनु अपने कंट्रोल दे अंदर ले आओ, इसदे मास्टर बनो, तो इसनु उस पासे वल जाण नु वरतो जिस पासे वल जाण नु तुहानू हदायत कीती जांदी है। उस ट्रेजर लैंड नु जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करो जिथे खजाना है वो तुहाडे अपने ही अंदर है। कहिंदे हन इस देही दे विच ही है, इस देही तो बिना उसनू पाया नहीं जा सकता। सो इस देही नू विगड़न ना दिओ, कदे इस दे स्वभाव विगड़न ना दिओ, इस दियां आदतां विगड़न ना दिओ, इस दी एनर्जी नू वेस्ट ना करो, इसनू गलत आदतां ना पाओ, क्योंकि ये तुहाडी ट्रांसपोर्टेशन। अगला नुक्ता गुरु बाबा जी आखदे हन कि ए जो देही है, छेवां नुक्ता, सब तमाम जूना तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, सुपीरियर है। आप जी ने एक पंक्ति सुनाना अज गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों, महाराज जी ने लिखिया है, बहुत ध्यान नाल सुनना। सब माया मोह शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई। ये हुण मेरी अर्ज है, यूएसए दे विच जां होर जिथे भी कीर्तन का मौका मैनूं मिलिया है, कोई खास पंक्ति हुंदी है तो मैं उस सारी संगत नूं बुलाना हुंदा, सारी संगत उसनूं बोले, ताकि दो चार दफा बोलन नाल वह पंक्ति याद भी हो जाती, क्योंकि वह बहुत ही एक खास पंक्ति हुंदी है। तो आप जी दास तो बाद अद्धी तुक मैं पहला बोलांगा, फिर मेरे कहन तो बाद आप सारे बोले, तो ये पंक्ति आपनूं याद हो जाएगी। सब माया मोह
ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮਸ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ, ਮਮਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਠੱਗੀ ਆਦਿ, ਵੈਰ, ਮੇਰ, ਤੇਰ, ਆਪਣਾ, ਬੇਗਾਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਮਤਾ, ਮੋਹ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਜੋ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਸ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੂਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਵਰ

सिखदारी। इतना कुछ हुंदया होया भी ए इंसान, गुरु महाराज जी आखते हैं तेरे अंदर फिर रब ने एक खास ज्यूल रखिया है, खास जोत रखी है, खास पदार्थ रखिया है, जिस नाल तेरे सारे डर, सारे दुख, सारिया दर्दा, सारिया थोड़ा, सारिया तकलीफा कहते उस वस्तु नु प्राप्त करन दे नाल समाप्त हो सकदियां हन। अगर तू उसनु नहीं पाया तो फिर हाले तक तू की कर रहा है? फिर कहते हैं तू की पाया है इस जगत दे विच आके, अंदले क्या पाया जग आए। समा भी समाप्त है, प्रेम नाल सारे गाओ। अते हुण इस विचार दा जो कंडा चुभना चाहिदा है, जे नहीं चुभदा, ये सानू नहीं साडे अंदर कोई टर्मोइल ल्यांदी, साडे अंदर नहीं सोच विचार पैदा करदी, फिर इसका अर्थ यह है कि असी किसी ना किसी नशे के अधीन हाँ, कि सुन के भी साडे उत्ते असर नहीं होंदा। प्यार ना लगा।

कब हूं ना डरूं। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटी, जुल्म नूं देख के कदम पछां ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मावां ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीहां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने, दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुलमी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंह पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुल्मी राजा सिंघां ते कहर टांदा है, मां दा दर्द उठिया, रिहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई, मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही उनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं, ते असी उनू छड़ देवांगे, केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक, मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती है, वो कहती है नहीं नहीं वो मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नूं, वो मेरी मां नहीं, हो सकता है उदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर वो सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मावां इंज सिदकों डोलदियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक बारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ते तेनू छड़ देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मावां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओह ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जिहियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तर दे जकारे निकल रहे।

बहुत प्राचीन मधुर अते प्रमुख रागों विचों एक है। इस विच ऋषभ अते धैवत अति कोमल अते होर सुर शुद्ध लगते हैं। वाद्य स्वर धैवत अते संवादी ऋषभ है। इसके आरोह अवरोह विच सत सुर लगते हैं। अमृत वेले तो पौ फुटाले दे समय दौरान यह राग गाया जाता है। इस राग की मधुरता ऋषभ अते धैवत दे उचित प्रयोग ते निर्भर है। पैरों का वातावरण अति सुहावना हुंदा है। प्यार उपजाऊ है। इस राग विच भगत प्रहलाद जी की कथा का जिक्र गुरु साहब ने विस्थार नाल कीता है, जिसने हरनाक्ष का हंकार भन्निया। गुरु की करणी बारे फरमान है, मृग पकड़े बिन घोर हथियार। इत्थे ही नामदेव जी की सूरमताई का भी जिक्र है, जिन्हां मां नूं कह दिता सी ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए। बीबी जसविंदर कौर जी पासों शब्द सरवण करो, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। अते दूजे शब्द का गायन कर रहे हैं भाई रविंदर सिंह जी। शब्द है माथे तिलक हथ माला बाना। पहला शब्द गुर जैसा

धन गुरु नानक पातशाह जगत जलंदे नूं ठारन जो आए सी, वेख्या संसार ते बड़े जुलम पै रहे हन। जे सकता सकते को मारे तां मन रोश न होई, तां कोई रोश नहीं, पर गरीब जनता नूं लताड़िया जा रहा सी। लहू दियां नदियां बहाइयां जा रहियां सन। सैदपुर दे पठान जो हिंदुस्तान ते काबज सन, जनता नूं लताड़ रहे सी। बड़ी दुखी सी जनता, बड़े हंकारी हो गए सन। निरंकार दी लीला है, पाप की जंज लै काबलों दाया। जो के निरंकार दा खेल है, ए बाबर ने भी राज भाग करने सी आके, ते काट इस भी ना कीती, हिंदुस्तान ते आके बड़े जुलम ढाए। जिथे सैदपुर दे पठाना नू सजा मिली, उथे फिर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह बाणी विच दस रहे हन, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी, ज्ञान वे लालो पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगे दान वे लालो। मुगलां ने आके चढ़ाई कीती, ते फिर जोर दे नाल आके दुनिया कोलों धन दौलत सब कुछ खो लिया। गरीबां दे लहू बहाए, जिथे शाहूकारां नूं लुटिया, उथे संतां साधुआं फकीरां नूं भी पकड़ के अपने कैदी बना लिया। ते जगत जलंदे नूं ठारन लई आए निरंकार दा रूप, कोट ब्रह्मंडां दे मालक सुख देना सी संसार नूं। आप भी इस टोले विच हो विचरे, जो कुछ लुटिया सी ए माल धन चुकन लई लोड़ सी उना नू, ते सारियां दे सिरां ते पंडा रख दित्तियां, ते अगे ला लिया। धन गुरु नानक पातशाह जी दे सिर ते भी पंड रख दित्ती, पर इना ने की तकिया के धन गुरु नानक पातशाह एक हाथ विच माला है, दूजे हाथ विच काशा है, ते पंड चार उंगलां सिर तों उपर चल रही है। सिपाहियां ने जाके अपने सरदार नूं दस्या, भई एक फकीर ऐसा अजमत वाला है, जिसने हाथ भी नहीं रखिया होया, ते पंड नाल नाल चली आ रही है सिर ते। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। इना ने जिथे लुट दा माल कठा कीता होया सी, नाल ही एक कैदखाना भी बनाया होया सी, जिथे चक्कियां रखियां होईयां सन फौजां दे आटा पीन दे। सारियां नूं कणकां दित्तियां गईयां, भई चक्कियां चलाओ भई, ते आटा पीवो। धन गुरु नानक पातशाह जी नूं भी दित्ती गई, ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जिन्हां ने अरदास कीती सी, जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारे उभरे तिते ले हो बार। हे निरंकार, तेरी सृष्टि इतना दुख भोग रही है, इतनी कुरला रही है, कृपा कर इन्हां नूं सुख सुखी कर। धन गुरु नानक पातशाह मरदाने नूं कहण लगे, मरदानिया तैनू चक्की चलाउण दी लोड़ नहीं, तू परमेश्वर दा सिमरन कर। रबाब वजा बाणी आई है, ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने ए शब्द उचारण कीता के एती मार पई कुरलाने, तै की दर्द ना आया। हे निरंकार, कृपा कर, प्रजा ते बादशाह दा की मेल हुंदा है, प्रजा दे गरीब बंदियां दा ते बादशाह दा मेल।
इस तरह है जिवें एक शेर गौआं दे वग नूं अगे ला लवे पर उसका रथवाई उदी रखवाली करदा है। तू कृपा कर इस जगत जलंदे नूं सुखी कर। एक अरदास कीती जां पादशाह बाबर नूं पता लग्या कि एक ऐसा अनोखा फकीर आया है कैदी बन के जिदी चक्की आपे चल रही है, आप ओ गले विच दाने भी नहीं पा रहा, आपे ही दाने पै रहे हैं ते आपे ही पीछे जा रहे हैं। ता आके जदों दर्शन कीते, दर्शन कर दिया आत्मा शुद्ध हो गई। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। बाबर ने कहा, हे बंदे खुदा दे तू कौन है? धन गुरु नानक पातशाह कहन लगा, मैं कोई होर नहीं, मैं भी उसका एक मामूली बंदा हां, पर तू बंदियां वाले काम नहीं कर रहा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे बाबर नूं, भाई तू भाई खुदा दा बंदा है? आखे जी मैं खुदा दा ही बंदा हां। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे, जेड़े खुदा दे बंदे होंदे हन ओ खुदा दे बंदियां ते रहम करदे हन, जुलम नहीं ढांदे। जे किते बाबर खुदा दा बंदा हुंदा तां फिर ए पशुआं वांगू दुनिया नूं मारदा ना, लिताड़दा ना, निरादर ना करदा। खुदा दे बंदे विच खुदाई हुंदी है। खुदा संसार विच वस रहा है ते संसार खुदा विच वस रहा है। जे संसार नूं दुख देईए तां ओ दुख उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं पहुंचदा है। तू निर्दोष प्रजा नाल क्यों इहो जे जुल्म कर रहे हैं? हुण सिपाही हुक्म दी उडीक विच हन, भाई अज इस दा छुटकारा नहीं हो सकदा, क्योंकि एडी वड्डी गल कर रहे है फकीर। पर बाबर दा मन झुक गया जदों अपने अंदर दा शीशा वेख्या कि जिस वाहिगुरु ने, जिस अकाल पुरख ने एडे सुख दिते, एडियां वड्याईयां दित्तियां, ते मैं उसकी साजी हुई सृष्टि नूं सुख ना देवां, लताड़ा ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਨ ਤਾਂ ਕੌੜੇ ਬਚਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਨਾਰਾ ਸਨ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਖੁਦਾ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणां विच बेनती कीती, हे निरंकार कृपा कर इस जगत जलंदे नूं रख लै, इन्हां जीवां नूं सुमत बख्श। ए पुन्नां करके बादशाह तां बन जांदे हन, पर तेरी कृपा नूं, तेरी होंद नूं ए भुल जांदे हन।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, सानू अपने ना पवित्र वचना के द्वारा ये दस रहे हैं कि साड़ी जीवन की यात्रा जो है वो सफल क्यों नहीं हो रही, उसके विच ऑब्स्टैकल्स की हैं। साड़े जीवन की जो विधि है वो किस किस्म की है, तो आओ गुरु बाबा जी के चरणों के विचों पूछिए, महाराज असी अपने जीवन की यात्रा किमें सफल कर सकते हैं, असी अपनी जिंदगी नूं किमें रंगीन बना सकते हैं। तो बाबा जी आखते हैं कि तुहानू तीन चीजा मिलियां, नंबर एक बॉडी माइंड एंड सोल, जो उस दिन शब्द के विच दास ने अर्ज की थी।

बॉडी जड़ी, अजीवात्मा इस दे विच ड्राइवर की तरह बैठा है। बाबा जी आखते हैं किसी भी यात्रा ते सक्सेसफुली पहुंचने दे वास्ते जो उसका वहीकल है उसका परफेक्ट कंडीशन दे विच होना एब्सोल्यूटली लाजमी है। जे वहीकल बिगड़िया होया है, जे वहीकल रिलायबल नहीं है, तो वो यात्रा जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। महाराज जी साडे वहीकल नु की होया, वट इज रोंग विद अवर वहीकल? वो आखते हैं इत्थे बस नहीं, जदों किसे ने किसे वहीकल दे विच अपनी यात्रा करनी होवे तो उसनु अपने वहीकल दा ए टू जी पूरा पता होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। तो गुरु साहब देखते हैं कि सानू अपना ये जो शरीर वहीकल है इसका कुछ भी पता नहीं, बस असी जन्म ले लिया है, शरीर सानू मिल गया है, भुख लगती असी खा लें, नींद आती असी सौ लें, प्यास लगती असी पी लें, बोल चाल लें, होर जो शरीर के फंक्शन हैं असी वो कर लें, पर सानू इस वहीकल का कोई पता नहीं है एक ही चीज है, एक ही चीज है। तुसी अपनी यात्रा किवें सक्सेसफुली अकम्पलिश करो जदों तुहानू अपने वहीकल के मुतलिक ही कोई पता नहीं, एक ही वस्तु की है। नंबर एक, दूसरी गल ए है जो साडे जीवन दे विच परमारथ रूहानियत आत्मिकता स्पिरिचुअलिटी पीस ऑफ माइंड स्टिलनेस स्टिलनेस ऑफ माइंड कामनेस ऑफ माइंड इनर जॉय एंड इनर ब्लिस, ये सब कुछ जो नहीं आन दिंदी उसका कारण महाराज जी अपनी बाणी च दसते हैं। अज दोवां उत्ते असी जो है दो पॉइंट्स के उत्ते अपनी विचार जो है वह रखांगे। गुरु महाराज जी आखते हैं प्यार नाल बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

काया कमली है, चली उन्हां चीजां दे विच खो गई है, गुम हो गई है, रच गई है, जड़ियां चीजां ने इसे नू ही खराब करना। स्वाद हन इसलिए ही काया दे वास्ते ही डैमेजिंग बन जांदे हन, लेकिन काया उन्हां दी एडिक्टेड हो जांदी है, इस करके कहिंदे काया कमली। अल्कोहल काया लिए अच्छी है, लेकिन काया नू नहीं पता, काया उसकी एडिक्टेड हो जाती है, जो चीज ने इसे नू ही बर्बाद कर देना है। तो ड्राइवर जो अंदरला है वह बहुत कमजोर है, वो काया का गुलाम हो चुका है, काया ने ड्राइवर नू टालिया है, काया जो मंगती है वह उसनू प्रोवाइड करी जा रहा है। काया कमली हंस इयाना, तो जिहड़ा हंस है जिहड़ी अंदरली आत्मक जोत है वह कहिंदे हाले बहुत मध्यम है, वह न्याणा है, वह हाले उस बुजुर्गी नहीं आई, क्योंकि उसने बुजुर्गों की महापुरुखों की विचार अपने अंदर ग्रहण नहीं की, ना सुनी ना समझी ना विचारी, तो उस दे अंदर बुजुर्गी नहीं आई, वह इयाना है। जिधर काया लाई फिर है उसके पास वह चलिया फिर है, सारी ह्यूमन सोसायटी जिहड़ी है वह काया के पिछे चल रही है, सारी ह्यूमन सोसायटी काया नू ही प्लीज करन दे उते लगी पई है। काया कमली हंस इयाना, एक पंक्ति च होर आखदे हन महाराज जी, कहिंदे हन

आशा बंदी मूर्ख दे, ए दे बड़ी मूर्ख है, अगां तो अगां दी आशा बंदी जा रही है, पर इस देही नू ए नहीं दिसदा कि मैं बड़े लंबे समय दे फ्यूचर दे वास्ते अपनिया जो आसामां बंदी हां, पर ए नहीं सोचती कि मैं रहना कदों तक है, कि डे बाय डे मैं ताकतवर होना है कमजोर होना है, डे बाय डे मेरी एज घटनी है या बदनी है, डे बाय डे मेरा एनर्जी लेवल बदना है या घटना है। इस करके एक कंसर्न ही नहीं है, इसका जीव आत्मा इतना न्याणा है कि वो सोचना नहीं कि दिस इज गोइंग टू बिकम वीकर एंड वीकर एंड वीकर, इसके वास्ते टाइम से इस तो मैं अपना कम लवा, और सगों इस दे नाल रलिया होया है अते काया ये जड़ी बड़ी मूर्ख है। तो यह साड़ी सत्संग की हालत है कि इंद्रियां सबल हैं, असी इन्हां नूं वरतना सी पर यह हुण सानू वरत रही हैं, असी इन्हां नूं वरतना सी पर वरत ए रही हैं सानू। तो कितनी ट्रेजेडी की गल है, कितने अफसोस की गल है, महाराज जी ने ए इंद्रियां सानू दित्तियां सन कि इन्हां दे नाल असी अपना परमार्थ की जो यात्रा है वो सिद्ध करनी है, सफल करनी है। और फिर महाराज जी पूछते हैं, भाई ए श्रीदा मेरिया इस जग में आए कि क्या तुद कर्म कमाया, कि तू की कीता है, तू तो सारे दे सारे अपने इस इंस्ट्रूमेंट नु ही डैमेज कर लिया है। पूंडी चाल कहते अखीर जाके बिरध उम्र जाके तेरी चाल भी नहीं सुनी रह जाती, डगमगा के तुरदा है, सोटी दे नाल तुरदा है, लंगड़ा के तुरदा है, पूंडी चाल यानी चाल ही अगली हो जाती, चरण कर खिसरे, हाथ अते पैर ओ खिसक गए हैं, वह कंबदे हैं। तुचा देह कुमलानी, जड़ी देही दी तुचा है, जड़ी स्किन है, चमड़ी है, यह तो कुमला गई है, तो झुरड़ियां पै गई हैं, फिर असी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करा के उसनु असी लिफ्ट देने हैं, अपलिफ्ट कराने हैं। तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंध, उन्हां अखियां ने जिन्होंने ज्ञान पढ़ना सी, साधुआं दे दर्शन करने सन, वो कुछ होर कर दियां रहियां, गुरमुखां दे दीदार नहीं किते, गुरबाणी दे दीदार नहीं किते, गुरबाणी पढ़न दा मौका नहीं मिलिया, गुरबाणी पढ़न दा इंटरेस्ट नहीं बनिया, सतपुरखां दे विचार पढ़न दा इसने इस्तेमाल नहीं लिया, हुण कहिंदे नेत्री धुंध, नेत्रां दे विच भी धुंध आ गई है, फॉग आ गई है, क्लीयर दिसदा नहीं, कर्ण पै बहरे, हुण कन्नां तों भी घट सुणदा है, कन्न मिले सन सत्संग सुनन लई, रब की गल सुन ली, उस पास से चलन दे वास्ते वध तो वध इन्फॉर्मेशन सुन दे वास्ते, पर कहिंदे हन हुण वह भी समा लंघ गया, कर्ण पै बहरे, मनमुख नाम ना जानी, इस मनमुख ने नाम रूप वस्तु नू कहिंदे जिस दे नाल इसने थ्रिल्ड होना सी, फुलफिल्ड होना सी, कंप्लीट होना सी, अकम्पलिश्ड होना सी, सक्सैसफुल होना सी, वह कहिंदे इस मनमुख ने जानी ही नहीं। तां महाराज जी इस इंसान नू कहिंदे हन, अंधले क्या पाया जगया, ओ अन्ने तू इस जगत दे विच आके की पाया है, की प्राप्त कीता है,

मानस जन्म दुलंब है, होए ना बारंबार, जो वन फल पाके पोहेंगरे बहर न लागे डार। जिस तरह दरख्त दे नालों टुट के फल नीचे गिर जाए ते दोबारा और टाणी दे नाल नहीं लगदा, एक दफा ए दुर्लभ तन जो है जदों गिर जाएगा धरती उते, फिर इस दे वापस उठन दी कोई उम्मीद, कोई आशा, कोई चांस बिल्कुल नहीं है। ये दुर्लभ। सो वी आर कैरिंग समथिंग विच इज सो इनवैल्यूएबल। हाउ वेल्थी वी आर एंड हाउ मच थैंकफुल वी आर, वी नीड टू आस्क दिस टू अवर सेल्फ। दूसरा नुक्ता, नंबर एक दुर्लभ, दूसरा नुक्ता गुरु बाबा जी आखते हैं ये मंदिर है। कद असी सोचा कि मैं ही मंदिर हां? आप जी ने कितनी दफा ये विचारिया सोचा होएगा कि यही मंदिर है। बाबा जी की बाणी दसदी है कि मंदिर की है। जो सोचते विचारते जानते हैं ऐसे गुरमुखा नूं मैं नमस्कार करता हाँ, पर असी बाणी चों तन दे प्रति बॉडी दे प्रति ही इनफॉरमेशन नहीं लई, असी कई दफा बाहरों इनफॉरमेशन इकट्ठी करते फिरते हाँ, जबकि साडे गुरु साहिबान ने इतना भरपूर ज्ञान बख्शिया है सिर्फ बॉडी दे मुतलक ही। अज इत्थे 10 दिन कीर्तन करिए इस चीज दे उत्ते भी, सिर्फ इस चीज दे उत्ते ही, तां भी ओ इनफॉरमेशन जो है ओ कंप्लीट नहीं हो सकेगी कि बाबा जी ने तन दे उत्ते सानू की कुछ दस्या है कि तन की चीज है, पर असी उसनू किसे होर ही फैशन च पढ़ते हैं। सोच विचार के पढ़ना, ज्ञान नाल पढ़ना ओ होर चीज है। आओ दूसरा नुक्ता, दूसरा पॉइंट महाराज जी दसते हैं ये मंदिर है, टेंपल ऑफ गॉड, दिस इज द रियल टेंपल। इस तो बिना होर कोई टेंपल नहीं, बाणी च किते नहीं आखी, कहिंदे ए मंदिर है। बाणी दा प्रमाण सुन कहिंदे हन

स्पष्ट है नुक्ता, हर मंदिर ये शरीर है, ये शरीर हरि का मंदिर है, फिर तो इसमें भी नमस्कार करनी बनगी, फिर तो ये पूजन योग है। जे ये हरि का मंदिर है, हर मंदिर ये शरीर है, काया महल मंदिर घर हर का हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का एक घर है, अकाल पुरख वाहिगुरु के निवास का स्थान है। तो फिर सानू इस मंदिर नू मंदिर की तरह रखना चाहिए है। मंदिर के अंदर की हुंदा है, मंदिर के अंदर शांति हुंदी, मंदिर के अंदर पूजा हुंदी है, मंदिर के अंदर कीर्ति हुंदी है, मंदिर के अंदर रेवरेंस हुंदी है। मंदिर के अंदर पवित्रता ही हुंदी है, पवित्रता ही हुंदी है। मंदिर के अंदर रब्बी संगीत हुंदा है, डिवाइन म्यूजिक हुंदा है, कीर्तन हुंदा है। मंदिर के अंदर संगत हुंदी है, साथ संगत हुंदी है। अगर ये मंदिर है तो फिर इस मंदिर का जो एनवायरमेंट है वो सारा मंदिर वर्गा ही होना चाहिए है। अगर ये मंदिर है तो इसके अंदर शांति होनी चाहिए है, टिकाव होना चाहिए है, इसके अंदर हर वक्त पूजा आराधना होनी चाहिए है, इसके अंदर सत्संग होना चाहिए है। मंदिर च प्रभु जी का निवास होता है, गुरुदेव होंगे हैं, इस मंदिर के भी हर वेले गुरुदेव की प्रेजेंस महसूस होनी चाहिए है। मंदिर की असी कदे बेअदबी नहीं करते, उपर असी जोड़ा पा के नहीं आ सकते क्योंकि बेअदबी हो जाएगी, फिर इस मंदिर की भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मंदिर की बेअदबी बड़ा वड्डा गुनाह है। इस मंदिर की जो कि इट्टा नाल लकड़ियां नाल पत्थर नाल बनया है, असी कितने कंसर्न हां कि बेअदबी ना होवे, पर इस मंदिर की बेअदबी जितनी मर्जी हो जाए उस दे वास्ते असी कदे कंसर्न नहीं हैं। सर्टन थिंग्स तुहानू पता है कि असी इस मंदिर च नहीं लिया सकते, खाण वालियां पीण वालियां इस मंदिर च असी नहीं लिया सकते, ना असी इत्थे कुक कर सकते, ना बना सकते हैं, ना वरता सकते हैं। अगर लै आइए बनाइए खाइए पीए तो इत्थे झगड़ा हो जाएगा, पर वो वस्तुआं इस मंदिर च असी किवें लै जाने हैं जिसनू महाराजी मंदिर आखते हैं। इस मंदिर च असी वो तमाम चीजा ता ही लजाने हां कि सानू ये ज्ञान ही नहीं मिलिया गुरु बाबा जी की बाणी तो हाले तक कि असल मंदिर इंसान आ तेरा शरीर है, इस मंदिर के अंदर वो ही कुछ लजा जो जान दे योग है। इस मंदिर के विच कोई भी ऐसी वस्तु पाई जो योग नहीं है, बहुत वड्डा गुनाह अते बहुत वड्डा पाप हो जाएगा। इस मंदिर नू पवित्र तो वध के पवित्र रख, इस मंदिर के अंदर का वातावरण जो है वह पवित्रताई वाला रख। पर साडे अंदर की है, वैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ द्रोह याहू जुक्त बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो अपन कर कर्म। असी तो यह कुछ पाई बैठे हाँ तो मंदिर की कितनी वड्डी असी बेअदबी कर रहे हैं। तन के मतलब जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, व्हीकल है, पर

बहुशास्त्र व स्मृति पेख है सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप

गुरमुख सतगुर दे सन्मुख रहण वाले जीवन जिउंदिआं भी प्रवान ने हजूर दी दरगाह विच कबूल ने ते जदों शरीर छड़ जांदे ने ते फिर भी प्रवान ने माता दी कुखों मनुख जन्म लैंदा पर गुरमुख सतसंगत दी कुखों जन्म लैंदा। सतसंगत दी कुखों जन्म लैके जो गुरु दी दित्ती हुई तरतीब विच गुरु दे दसे हुए नेम विच अपना जीवन बिताउंदा है उसनू गुरमुख कहिंदे ने जो गुरु दे सन्मुख रहिंदा है। जीवन विच भी सुगंधियां वंडदे रहे जीवन विच भी खेड़े वंडदे रहे क्योंकि गुरमुख दी टेक नाम है गुरमुख दा आसरा नाम है। गुरमुख परमात्मा दे गुणा दी सुगंधी वंडदा है खुशबू वंडदा है ए गुरमुख दा दान है। गुरमुख नाम दे आसरे अपनी मत नूं अपने मन नूं निर्मल रखदा है ए इशनान है। गुरमुख नाम दान इशनान। गुरमुख ने जीवन विच परमेश्वर दे गुणा दी सुगंधी वंडी

माली दी नजर भी नहीं। आप हुदरे बूटे उग पेंदे, एक दूसरे दे अंदर इस तरह फस जांदे ने, रस्ते दे राह भी रोक लेंदे ने, जंगल दे राह भी रोक लेंदे। इस तरह बेतरतीबे बूटे संगने उना दे अंदर खतरनाक लुटेरे भी लुके रहिंदे, खतरनाक जानवर भी पना ली बैठे। लोकी डरदे जे जंगल विच जान, जंगल दे बूटियां दी शां शां आई हुई हवा उना पत्तियां दा झुलना भी डराउंदा है। हो सकदा उन्हां नूं फुल भी लगदे हां बूटियां, पर कोई सुंघण नहीं जांदा। सबो सतनाम श्री। पर कदे किसे बगीचे च जाके देख, जिन्हां नूं माली सिंजदा है, जिन्हां ते माली दी नजर है, पत्ते पत्ते ते डाली डाली दी माली नूं खबर है, उन्हां च लोकी सैर करन जांदे ने बगीचियां, आनंद लैण जांदे, उन्हां दे खेड़े देखण जांदे ने, सुगंधियां सुंघण जांदे, क्योंकि ओह तरतीब विच ने, माली दी दित्ती हुई तरतीब च रहिंदे। मनमुख

गुरु पातशाह ने इस पावन पवित्र शब्द अंदर गुरु दी पूजा दसी है। गुरु दी पूजा किवें करनी है, इसे तरह का ख्याल भगत कबीर जी देंदे हुए सानू एक गल समझांदे ने। कहिंदे ने हे मनुख हे इंसान, पूजा किवें करनी है। किसे ने कह दिता तीर्थ स्नान इयो पूजा है। हुण भगत जी इस गल नूं स्पष्ट करदे हुए उपदेश साडे तक पहुंचांदे हुए कहिंदे ने, अंतर मैल जे तीर्थ नावै, अंदर तेरे मैल भरी हुई है, अंदर तेरे गुनाह कठे कीते हुए ने, अंदर तेरे अवगण ही अवगण हन। भगत जी कहते ने जे तू तीर्थ स्नान करन भी चला जाए तू तीर्थ नूं भी गंदा करके रख देवेगा, क्योंकि तेरे अंदर इतना गंद है, तेरे अंदर इतनी मैल है। भगत जी कहते ने वाकई लोगों ने अपनी मैल धो धो के तीर्थ नूं भी गंदियां कर दिता है, मैला कर दिता है। पर इत्थे हुण भगत जी कहते ने तीर्थ केड़ा है ते गुरु की पूजा की है। अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, वह बैकुंठ नूं नहीं जा सकता, ओनू कदी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। जे तीर्थ स्नान करन गया भी अपने अंदर दी उन्हें मैल नूं नहीं त्याग गया, अवगणा नूं नहीं त्याग गया, गुनाह नहीं त्यागे। कहिंदे ने कोई फायदा नहीं तीर्थ यात्रा जाण दा भी। लोग पति ने कछु ना होवे ना ही राम इयाणा। ओ परमात्मा कोई इयाणा बाल नहीं है, जिन्हों तुसी इंज पतिया लवोगे। अगे भगत जी कहिंदे ने पूजो राम एक ही देवा। अगर जे पूजा करनी है ते भाई एक दी कर, बहुत यादी नहीं, एक दी पूजा बहुत है।

सारा दिन न रहन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा कहे कबीर नर्त से त्यावो बावरे आ संसारा। हे नर उस मालिक नु त्या, उस मालिक दी पूजा कर, तू ते संसार दी तरह एवी बौरा होया है, पागल शुदाई मेंटल होया होया है, इसलिए आ उस मालिक नु त्या जिस ते त्याउन दे नाल तेरी पूजा सफली हो सकती है। किदे नाल तू पूजा करनी चाहना है, इस मन नाल? शैब कहते ने भी तेरा नहीं, इस तन नाल ये भी तेरा नहीं है, इस तन नाल ये भी तेरा नहीं है। आज इंसान नु मनुख नु हंकार ही ऐसे गल है, कहने तन मेरा, मन मेरा, तन मेरा, हे परमात्मा तेरा की है। ध्यान देना मेरी गल वल, हे परमात्मा तेरा की है। पर इत्थे साहिब कहिंदे ने हे मनुख, हे इंसान, सब कुछ ते है ही परमात्मा दा है, तू किहदे नाल पूजा कर रहे हैं, तेरी पूजा

बिन गुर चरणा पूजना, बिना गुरु दे चरणा तो पूजा सब कूड़ सुवाओ। सारे मनोरथ सब झूठ हन कूड़ हन। आरंभता पहले दिन इसे ही गलत होई सी कि हरी दे नाम तो बिना सब कुछ झूठ है। ते इत्थे भी सतगुरु ने उपदेश यही दिता है। ते भाई साहब भाई गुरदास जी इस गल नूं बड़े ध्यान दे नाल ते बड़े ख्याल नाल साडी चोली पा के कहिंदे ने कि जिहड़ा मनुख अपने गुरु दे चरणा तो बिना किसी होर नूं ध्याउंदा है भाई सब कुछ झूठ है, सच नहीं है।

बिन गुर बचन जो मनना, जो गुरु दे बचन तो बिना चलता है। असी कहने ते हां कि हे गुरु साहब जो तुसी कहो ओ सी करन नु तैयार हां, पर खिमा करना सी कर दे कोई नहीं। असी ओही कुछ करदे हां जो साडा मन मनदा है, जो साडी मत कहिंदी है। जिवें असी चलना चाहने हां, अगर गुरु दे हुक्म नाल चलीए ते खिमा करना अज दुख तकलीफ कदी भी ना होवे। ये दुख तकलीफ क्यों है? क्योंकि असी गुरु का हुक्म नहीं मानते, गुरु का बचन नहीं मानते। बिन गुर बचन जो मनना ऊरा परथाओ, कहते तुझ जी एक वसीला है। जे मनुख तू कर सके ते जिना मनुख कर लवे ओदे हुक्म रजा विच आ जाए, फिर कहते ओदी पूजा परवान हो जाती है।